ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 21 अगस्त शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानों से सुने समाचार। जापान और ओमान के विदेश मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ी चर्चा में इस अहम जलमार्ग के किनारे स्थित देशों और इसका उपयोग करने वाले राष्ट्रों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल किया जाना चाहिए। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने बृहस्पतिवार को खाड़ी देश ओमान में विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी के साथ दोपहर के भोज पर चर्चा सहित 2 घंटे से भी लंबी बातचीत की। ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य में एक नया समुद्री मार्ग निर्धारित करने के लिए ईरान के साथ वार्ता कर रहा है। दोनों देश इस अहम परिवहन मार्ग के आमने सामने स्थित हैं। मोतेगी ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि सभी जहाजों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के जलडमरू मध्य से मुक्त व सुरक्षित रूप से गुजरने की अनुमति दी जाए। उन्होंने ओमान और अन्य खाड़ी देशों के आर्थिक व अन्य क्षेत्रों में मजबूती लाने से जुड़ी जापान की सहायता योजनाओं के बारे में भी बताया। बद्र ने सतत ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में सहयोग जारी रखने की ओमान की मंशा व्यक्त की। रूस के रक्षा अधिकारियों के अनुसार उन्होंने अपने प्रशांत बेड़े के साथ ये मानकर अभ्यास किया है कि जापान के उत्तरी क्षेत्र के निकट जहाजों पर हमला हुआ है। उत्तरी क्षेत्र के द्वीपों पर रूस का नियंत्रण है, जबकि जापान इन पर अपना दावा करता है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास में परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी, एक निर्देशित मिसाइल क्रूजर और बेस्टियन नामक एंटी शिप मिसाइल प्रणाली शामिल थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले सप्ताह एक सैन्य अभ्यास का निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि वे एशिया प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष की संभावना देख रहे हैं, क्योंकि नाटो वहां अपने पैर पसारने लगा है और एक नया सैन्य राजनीतिक गुट बन रहा है। उन्होंने जापान द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी अनुचित बताया। जापान सरकार ने उत्तरी क्षेत्र के एक द्वीप पर पुतिन के दौरे को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। सरकार का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने जापान के उत्तरी क्षेत्र में रूस की बढ़ती सैन्य उपस्थिति की आलोचना की है। उत्तरी क्षेत्र के चारों द्वीपों पर रूस का नियंत्रण है, जापान इन पर अपना दावा करता है। उत्तरी क्षेत्र के निकट रूस के नौसैनिक अभ्यास के बाद बृहस्पतिवार को ओमान में मोतेगी ने पत्रकारों से बात की। मोतेगी ने कहा कि मिसाइल अभ्यास सहित रूस की सैन्य उपस्थिति जापान के रुख से मेल नहीं खाती और इसलिए अस्वीकार्य है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उत्तरी क्षेत्र के हालिया दौरे के जवाब में जापान की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर मोतेगी ने कहा कि जापान ने रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जापान राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए समय आने पर जवाब देने पर विचार करेगा। उन्होंने आगे कहा कि जापान उत्तरी क्षेत्र की संप्रभुता के मुद्दे को सुलझाने और रूस के साथ शांति संधि करने के अपने रुख पर कायम है। मोतेगी ने कहा कि सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। टोक्यो के उत्तर में तोचिगी प्रीफेक्चर के खानुमा शहर स्थित शिन खानुमा स्टेशन पर बृहस्पतिवार सुबह तोबू रेलवे की निक्को लाइन की पटरियों पर काम कर रहे चार मजदूर एक लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। इन चारों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत की पुष्टि हुई। रेलवे कंपनी का कहना है कि पटरी पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर्मचारी शायद एक दूसरे को ठीक से संदेश नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। ये मजदूर पटरियों पर खरपतवार नाशक का छिड़काव कर रहे थे। तोबू रेलवे के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार रात एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दुर्घटना स्थल पर 10 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 7 खरपतवार हटा रहे थे और बाकी 3 को निगरानी करने और झंडों से संकेत देकर ट्रेनों को स्टेशन पर आने की अनुमति देने का काम सौंपा गया था। अधिकारियों के अनुसार ट्रेनों के आगमन पर नजर रख रहे दोनों कर्मचारी अपने निर्धारित स्थानों पर थे, लेकिन हो सकता है कि वे आपस में संवाद नहीं कर पाए। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन चालक को मजदूरों के पटरियों से हटने का संकेत मिला, जिसके बाद वो ट्रेन लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। पुलिस इन्हें पेशेवर लापरवाही के परिणाम स्वरूप हुई मौतें मानकर इस मामले की जांच कर रही है। जापान के युवराज और राजकुमारी आकिशिनो ने पैरागुए में एक स्कूल का दौरा किया है, जहां बच्चों को जापानी संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया जाता है। युवराज और राजकुमारी ने बृहस्पतिवार को राजधानी आसुनशियोन स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति सांतियागो पेन्या से औपचारिक भेंट की। इसके बाद शाही दंपति ने चाय समारोह सहित जापानी भाषा और संस्कृति की कक्षाएं देने वाले एक स्कूल का दौरा किया। अनुमान है कि पैरागुए में 10,000 जापानी प्रवासी और उनके वंशज रहते हैं। स्कूल में शाही दंपति को फूलों के गुलदस्ते भेंट किए गए, जिसके बाद शाही जोड़े ने पुस्तकालय में छात्रों से बातचीत की। एक छात्र ने युवराज को एक ओरिगामी तोता भेंट किया, जिसे युवराज ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। स्कूल ने दंपति के स्वागत समारोह का भी आयोजन किया, जिसमें जापानी वाक्यांशों वाला एक गीत प्रस्तुत किया गया। समारोह में कलाकारों ने अपने सिर पर बोतलें रखकर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसकी युवराज और राजकुमारी ने तालियां बजाकर सराहना की। जुलाई में चीन से जापान को दुर्लभ धातु चुंबकों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 52% की गिरावट आई। चीनी सीमा शुल्क अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को आंकड़े जारी किए, जिनके अनुसार दुर्लभ धातु चुंबकों का कुल निर्यात 5,375 टन रहा, जो पिछले वर्ष जुलाई की तुलना में 3.5% कम है। दुर्लभ धातु चुंबकों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के मोटर आदि में किया जाता है। जापान को भेजी गई मात्रा 111 टन रही, जिसमें 52.2% की बड़ी गिरावट आई है। चीन सरकार ने जनवरी से जापान को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर नियंत्रण कड़े कर दिए हैं। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि इन प्रतिबंधों का असर दिख रहा है। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि टंगस्टन के शोधन में प्रयोग होने वाले एक प्रमुख कच्चे माल का जापान को निर्यात जनवरी से जुलाई तक शून्य रहा। टंगस्टन एक अहम खनिज है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 25वें पाठ में अपनी तबीयत के बारे में बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो बैठक में आराम कर रही है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है।
0: तो आइए सुनते हैं 25वें पाठ की बातचीत।
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो। दोशितान देसु का?
3: नोदो गा इताई इन देसु।
2: ओया ओया, सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
3: काइतो गा इमा वा त्सुकुत्ते इमासु।
4: तामेसान, देकिता यो। हाई, दोज़ो।
3: ओ दाइजी नी।
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: हारूजी में लगे सेंसर ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी टिमटिमाने लगी। तो हारूजी ने ताम से पूछा,
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो।
1: ताम जी, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है।
2: दोशितान देसु का?
1: क्या हुआ?
0: ताम ने खांसते हुए जवाब दिया,
3: नोदो गा इताई इन देसु,
1: गले में दर्द है।
0: तब हारूजी ने कहा,
2: ओया ओया।
1: ओ,
0: फिर हारूजी ने ताम को सलाह दी,
2: सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
1: ऐसे समय में अदरक और शहद वाला गर्म पानी अच्छा रहता है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
3: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
1: काइतो अभी बना रहा है।
0: फिर काइतो ताम के लिए अदरक और शहद वाला गर्म पानी लेकर आया।
4: तामेसान, देकिता यो।
0: ताम बन गया।
4: हाई, दोज़ो।
0: ये लो।
1: उसके बाद मिया ने ताम से कहा,
3: ओदाइजिनी,
1: अपना ध्यान रखो।
0: अदरक और शहद वाला गर्म पानी बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए अदरक को शहद के साथ गर्म पानी में मिलाया जाता है। ये माना जाता है कि इसे पीने से गले के दर्द और खांसी से राहत मिलती है। इसे पीकर ताम को अच्छा लगेगा।

0: आज का मुख्य वाक्य है,
1: नोदो गा इताई देस,
0: यानी गले में दर्द है। ये वाक्य सीखकर आप तबीयत खराब होने पर अपनी परेशानी बता सकेंगे।
2: इस वाक्य में
3: नोदो
2: का अर्थ है गला, उसके बाद लगा है गा, जो उस अंग के नाम के बाद लगाया जाता है जिसमें दर्द हो, और
3: इताई देस
2: का मतलब होता है दर्द है।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि
3: इताइन देस
0: के अंत में लगे
3: देस
0: का उपयोग अपनी बात समझाते समय किया जाता है। इसलिए किसी को अपनी तबीयत के बारे में बताते समय भी वाक्य के अंत में लगाते हैं
3: देस। इताइन देस
2: में पहले आया है ई विशेषण
3: इताई,
2: यानी दर्द होना, और उसके बाद लगा है
3: देस।
2: आज की बातचीत में ताम इस वाक्य की मदद से हारुजी को अपनी परेशानी समझा रही है।
0: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
3: इताइन देस, नोदो गा इताइन देस।
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें कोई अपनी तबीयत के बारे में बता रहा है।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
2: पहले महिला ने कहा,
0: क्या हुआ?
2: कोई परेशान दिख रहा हो तो उसकी समस्या पूछने के लिए इस वाक्य का उपयोग करते हैं। ये पूरा वाक्य एक साथ याद कर लीजिए।
0: जवाब में पुरुष ने कहा,
4: अतामा का इताइन देस,
2: सिर में दर्द है।
3: अतामा
0: का मतलब है सिर, इसलिए
3: अतामा का इताई
0: का मतलब हुआ सिर में दर्द है। पुरुष ने आगे कहा,
4: नेत्स गा अरुन देस,
2: बुखार है।
3: नेत्स
0: का अर्थ है बुखार, और
3: आरु
0: एक क्रिया है जिसका अर्थ है होना। तो
3: नेत्स गा आरु
0: का मतलब है बुखार होना। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि
3: देस
0: विशेषणों के ही नहीं क्रियाओं के बाद भी लग सकता है।
2: तो अब ये बातचीत सुन लीजिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
3: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, तो ये बात जापानी भाषा में कैसे कहेंगे? पेट के लिए जापानी शब्द है
3: ओनाका,
0: और दर्द को जापानी भाषा में कहते हैं
3: इताई।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
1: ओनाका गा इताई देस, ओनाका गा इताई देस।
2: अब मान लीजिए कि बहुत देर तक किसी वाहन में बैठे बैठे आपको आपकी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब लगना को जापानी में कहते हैं
3: किमोची गा वारुई।
2: तो अपनी बात जापानी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए।
4: किमोची गा वारुई देस, किमोची गा वारुई देस।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
1: ओदाइजिनी,
3: ओदाइजिनी
2: का अर्थ है अपना ध्यान रखो। अगर कोई बीमार हो या किसी को कोई चोट लगी हो तो आप फिक्र दिखाने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आराम करके जल्दी ठीक हो जाए।
0: अब इस वाक्य को विभिन्न लोगों की आवाजों में सुनते हैं।
5: ओदाइजिनी,
6: ओदाइजिनी,
7: ओदाइजिनी।
2: और अब एक बार फिर से सुन लेते हैं आज की बातचीत।
8: तामेसान, काओ इरो गा वारुई देसु यो। दोउ शितान देसु का?
1: नोदो गा इताइन देसु।
8: ओया ओया, सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
1: カイトが今作っています。
6: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
1: お大事に。
8: ハルさんの知恵袋。
0: अब बारी है हमारे अंश हारू जी की सलाह की, जिसमें आज हम बता रहे हैं कि अगर आप जापान में बीमार हो जाएं तो क्या कर सकते हैं।
2: जापान में बीमार होने पर क्या करना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी के लक्षण क्या हैं।
0: अगर लक्षण गंभीर न हो तो आप किसी भी दवाखाने या फार्मेसी से दवाई ले सकते हैं। वहाँ दुकानदार को अपनी परेशानी बताने पर वो आपको सही दवाई दे देगा। तो दवा खाने जाइए और दुकानदार से कहिए, पेट में दर्द है या बुखार है। ऐसा करने पर आपको बिना पर्ची के दी जा सकने वाली दवा मिल जाएगी।
2: लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको किसी चिकित्सालय या अस्पताल जाना होगा। विदेशी पर्यटकों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूची जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन यानी JNTO की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आप फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO शब्द से सर्च कर सकते हैं। इसे बुकमार्क कर लीजिएगा।
0: इसके अलावा पास के अस्पताल या चिकित्सालय का पता लगाने के लिए आप पर्यटन केंद्र या होटल के रिसेप्शन पर भी पूछ सकते हैं, और आपात स्थिति में फोन पर 119 दबाकर एम्बुलेंस बुला सकते हैं।
2: लेकिन हम ये कामना करते हैं कि जापान में यात्रा करते समय आपको कभी भी इन सुविधाओं की जरूरत ना पड़े।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ साकुरा यानी चेरी के फूल देखने जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 21 अगस्त शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। जापान और ओमान के विदेश मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ी चर्चा में इस अहम जलमार्ग के किनारे स्थित देशों और इसका उपयोग करने वाले राष्ट्रों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल किया जाना चाहिए। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने बृहस्पतिवार को खाड़ी देश ओमान में विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी के साथ दोपहर के भोज पर चर्चा सहित 2 घंटे से भी लंबी बातचीत की। ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य में एक नया समुद्री मार्ग निर्धारित करने के लिए ईरान के साथ वार्ता कर रहा है। दोनों देश इस अहम परिवहन मार्ग के आमने सामने स्थित हैं। मोतेगी ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि सभी जहाज़ों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के जलडमरू मध्य से मुक्त व सुरक्षित रूप से गुजरने की अनुमति दी जाए। उन्होंने ओमान और अन्य खाड़ी देशों के आर्थिक व अन्य क्षेत्रों में मजबूती लाने से जुड़ी जापान की सहायता योजनाओं के बारे में भी बताया। बद्र ने सतत ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में सहयोग जारी रखने की ओमान की मंशा व्यक्त की। रूस के रक्षा अधिकारियों के अनुसार उन्होंने अपने प्रशांत बेड़े के साथ ये मानकर अभ्यास किया है कि जापान के उत्तरी क्षेत्र के निकट जहाज़ों पर हमला हुआ है। उत्तरी क्षेत्र के द्वीपों पर रूस का नियंत्रण है, जबकि जापान इन पर अपना दावा करता है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास में परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी, एक निर्देशित मिसाइल क्रूज़र और बेस्टियन नामक एंटी शिप मिसाइल प्रणाली शामिल थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले सप्ताह एक सैन्याभ्यास का निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि वे एशिया प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष की संभावना देख रहे हैं, क्योंकि नाटो वहां अपने पैर पसारने लगा है और एक नया सैन्य राजनीतिक गुट बन रहा है। उन्होंने जापान द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी अनुचित बताया।

जापान सरकार ने उत्तरी क्षेत्र के एक द्वीप पर पुतिन के दौरे को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। सरकार का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशीमित्सु ने जापान के उत्तरी क्षेत्र में रूस की बढ़ती सैन्य उपस्थिति की आलोचना की है। उत्तरी क्षेत्र के चारों द्वीपों पर रूस का नियंत्रण है, जापान इन पर अपना दावा करता है। उत्तरी क्षेत्र के निकट रूस के नौसैनिक अभ्यास के बाद बृहस्पतिवार को ओमान में मोतेगी ने पत्रकारों से बात की। मोतेगी ने कहा कि मिसाइल अभ्यास सहित रूस की सैन्य उपस्थिति जापान के रुख से मेल नहीं खाती और इसलिए अस्वीकार्य है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उत्तरी क्षेत्र के हालिया दौरे के जवाब में जापान की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर मोतेगी ने कहा कि जापान ने रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जापान राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए समय आने पर जवाब देने पर विचार करेगा। उन्होंने आगे कहा कि जापान उत्तरी क्षेत्र की संप्रभुता के मुद्दे को सुलझाने और रूस के साथ शांति संधि करने के अपने रुख पर कायम है। मोतेगी ने कहा कि सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। टोक्यो के उत्तर में तोचिगी प्रीफेक्चर के खानुमा शहर स्थित शिंग खानुमा स्टेशन पर बृहस्पतिवार सुबह तोबू रेलवे की निक्को लाइन की पटरियों पर काम कर रहे चार मजदूर एक लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। इन चारों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत की पुष्टि हुई। रेलवे कंपनी का कहना है कि पटरी पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर्मचारी शायद एक दूसरे को ठीक से संदेश नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। ये मजदूर पटरियों पर खरपतवार नाशक का छिड़काव कर रहे थे। तोबू रेलवे के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार रात एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दुर्घटना स्थल पर 10 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 7 खरपतवार हटा रहे थे और बाकी 3 को निगरानी करने और झंडों से संकेत देकर ट्रेनों को स्टेशन पर आने की अनुमति देने का काम सौंपा गया था। अधिकारियों के अनुसार ट्रेनों के आगमन पर नजर रख रहे दोनों कर्मचारी अपने निर्धारित स्थानों पर थे, लेकिन हो सकता है कि वे आपस में संवाद नहीं कर पाए। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन चालक को मजदूरों के पटरियों से हटने का संकेत मिला, जिसके बाद वो ट्रेन लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। पुलिस इन्हें पेशेवर लापरवाही के परिणाम स्वरूप हुई मौतें मानकर इस मामले की जांच कर रही है। जापान के युवराज और राजकुमारी आकिशिनो ने पैरागुए में एक स्कूल का दौरा किया है, जहां बच्चों को जापानी संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया जाता है। युवराज और राजकुमारी ने बृहस्पतिवार को राजधानी आसुनशियोन स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति सांतियागो पेन्या से औपचारिक भेंट की। इसके बाद शाही दंपति ने चाय समारोह सहित जापानी भाषा और संस्कृति की कक्षाएं देने वाले एक स्कूल का दौरा किया। अनुमान है कि पैरागुए में 10,000 जापानी प्रवासी और उनके वंशज रहते हैं। स्कूल में शाही दंपति को फूलों के गुलदस्ते भेंट किए गए, जिसके बाद शाही जोड़े ने पुस्तकालय में छात्रों से बातचीत की। एक छात्र ने युवराज को एक ओरिगामी तोता भेंट किया, जिसे युवराज ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। स्कूल ने दंपति के स्वागत समारोह का भी आयोजन किया, जिसमें जापानी वाक्यांशों वाला एक गीत प्रस्तुत किया गया। समारोह में कलाकारों ने अपने सिर पर बोतलें रखकर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसकी युवराज और राजकुमारी ने तालियां बजाकर सराहना की। जुलाई में चीन से जापान को दुर्लभ धातु चुंबकों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 52% की गिरावट आई। चीनी सीमा शुल्क अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को आंकड़े जारी किए, जिनके अनुसार दुर्लभ धातु चुंबकों का कुल निर्यात 5,375 टन रहा, जो पिछले वर्ष जुलाई की तुलना में 3.5% कम है। दुर्लभ धातु चुंबकों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के मोटर आदि में किया जाता है। जापान को भेजी गई मात्रा 111 टन रही, जिसमें 52.2% की बड़ी गिरावट आई है। चीन सरकार ने जनवरी से जापान को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर नियंत्रण कड़े कर दिए हैं। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि इन प्रतिबंधों का असर दिख रहा है। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि टंगस्टन के शोधन में प्रयोग होने वाले एक प्रमुख कच्चे माल का जापान को निर्यात जनवरी से जुलाई तक शून्य रहा। टंगस्टन एक अहम खनिज है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 25वें पाठ में अपनी तबीयत के बारे में बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो बैठक में आराम कर रही है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है।
0: तो आइए सुनते हैं 25वें पाठ की बातचीत।
2: तामसान, काओइरो गा वारुई देसु यो। दोशितान देसु का?
3: नोदो गा इताई देसु।
2: ओया ओया, सोन्ना तोकी निवा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
3: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
4: तामसान, देकिता यो। हाई, दोज़ो।
3: ओ दाइजी नी।
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: हारूजी में लगे सेंसर ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी टिमटिमाने लगी। तो हारूजी ने ताम से पूछा,
2: तामसान, काओइरो गा वारुई देसु यो।
1: ताम जी, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है।
2: दोशितान देसु का?
1: क्या हुआ?
0: ताम ने खांसते हुए जवाब दिया,
3: नोदो गा इताई देसु,
1: गले में दर्द है।
0: तब हारूजी ने कहा,
2: ओया ओया।
1: ओ,
0: फिर हारूजी ने ताम को सलाह दी,
2: सोन्ना तोकी निवा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
1: ऐसे समय में अदरक और शहद वाला गर्म पानी अच्छा रहता है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
3: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
1: काइतो अभी बना रहा है।
0: फिर काइतो ताम के लिए अदरक और शहद वाला गर्म पानी लेकर आया।
4: तामसान, देखता यो।
0: ताम बन गया।
4: हाई, दोज़ो।
0: ये लो।
1: उसके बाद मिया ने ताम से कहा,
3: ओ दाइजी नी,
1: अपना ध्यान रखो।
0: अदरक और शहद वाला गर्म पानी बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए अदरक को शहद के साथ गर्म पानी में मिलाया जाता है। ये माना जाता है कि इसे पीने से गले के दर्द और खांसी से राहत मिलती है। इसे पीकर ताम को अच्छा लगेगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: नोदो गा इताई देसु,
1: यानी गले में दर्द है। ये वाक्य सीखकर आप तबीयत खराब होने पर अपनी परेशानी बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: नोदो
0: का अर्थ है गला। उसके बाद लगा है गा, जो उस अंग के नाम के बाद लगाया जाता है जिसमें दर्द हो, और
5: इताई देसु
0: का मतलब होता है दर्द है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि
5: इताई देसु
1: के अंत में लगे
5: देसु
1: का उपयोग अपनी बात समझाते समय किया जाता है। इसलिए किसी को अपनी तबीयत के बारे में बताते समय भी वाक्य के अंत में लगाते हैं
5: देसु। इताई देसु
0: में पहले आया है ई विशेषण,
5: इताई
0: यानी दर्द होना, और उसके बाद लगा है
5: देसु।
0: आज की बातचीत में ताम इस वाक्य की मदद से हारूजी को अपनी परेशानी समझा रही है।
1: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इताई देसु, नोदो गा इताई देसु।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें कोई अपनी तबीयत के बारे में बता रहा है।
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले महिला ने कहा,
6: どうしたんですか？
1: क्या हुआ?
0: कोई परेशान दिख रहा हो तो उसकी समस्या पूछने के लिए इस वाक्य का उपयोग करते हैं। ये पूरा वाक्य एक साथ याद कर लीजिए।
1: जवाब में पुरुष ने कहा,
7: अतामा का इताई देसु,
0: सिर में दर्द है।
5: अतामा
1: का मतलब है सिर, इसलिए
5: अतामा का इताई
1: का मतलब हुआ सिर में दर्द है। पुरुष ने आगे कहा,
7: नेत्स गा अरुन देसु,
0: बुखार है।
5: नेत्स
1: का अर्थ है बुखार, और
5: अरु
1: एक क्रिया है जिसका अर्थ है होना. तो
5: नेत्स गा आरु
1: का मतलब है बुखार होना. इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि
5: देस
1: विशेषणों के ही नहीं क्रियाओं के बाद भी लग सकता है.
0: तो अब ये बातचीत सुन लीजिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए.
5: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए. मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, तो ये बात जापानी भाषा में कैसे कहेंगे? पेट के लिए जापानी शब्द है
5: ओनाका,
1: और दर्द को जापानी भाषा में कहते हैं
5: इताई.
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए.
2: ओनाका गा इताई देस. ओनाका गा इताई देस.
0: अब मान लीजिए कि बहुत देर तक किसी वाहन में बैठे बैठे आपको आपकी तबीयत खराब लग रही है. तबीयत खराब लगना को जापानी में कहते हैं
5: किमोची गा वारुई.
0: तो अपनी बात जापानी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए.
7: किमोची गा वारुई देस. किमोची गा वारुई देस.
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है. आप भी याद कर लीजिए.
3: ओदाइजिनी.
5: ओदाइजिनी
0: का अर्थ है अपना ध्यान रखो. अगर कोई बीमार हो या किसी को कोई चोट लगी हो तो आप फिक्र दिखाने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं. इससे आप ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आराम करके जल्दी ठीक हो जाए.
1: अब इस वाक्य को विभिन्न लोगों की आवाजों में सुनते हैं.
8: お大事に。お大事に。お大事に。
0: और अब एक बार फिर से सुन लेते हैं आज की बातचीत.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: अब बारी है हमारे अंश हारू जी की सलाह की, जिसमें आज हम बता रहे हैं कि अगर आप जापान में बीमार हो जाएं तो क्या कर सकते हैं.
0: जापान में बीमार होने पर क्या करना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी के लक्षण क्या हैं.
1: अगर लक्षण गंभीर ना हो तो आप किसी भी दवाखाने या फार्मेसी से दवाई ले सकते हैं. वहां दुकानदार को अपनी परेशानी बताने पर वो आपको सही

0: दवाई दे देगा। तो दवा खाने जाइए और दुकानदार से कहिए पेट में दर्द है या बुखार है। ऐसा करने पर आपको बिना पर्ची के दी जा सकने वाली दवा मिल जाएगी।
1: लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको किसी चिकित्सालय या अस्पताल जाना होगा। विदेशी पर्यटकों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूची जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन यानी JNTO की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आप फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO शब्द से सर्च कर सकते हैं। इसे बुकमार्क कर लीजिएगा।
0: इसके अलावा पास के अस्पताल या चिकित्सालय का पता लगाने के लिए आप पर्यटन केंद्र या होटल के रिसेप्शन पर भी पूछ सकते हैं और आपात स्थिति में फोन पर 119 दबाकर एम्बुलेंस बुला सकते हैं।
1: लेकिन हम ये कामना करते हैं कि जापान में यात्रा करते समय आपको कभी भी इन सुविधाओं की जरूरत ना पड़े।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ साकुरा यानी चेरी के फूल देखने जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: है इसे याद कर लेना बेहतर होगा।
1: आतामा का इताइन दिस।
2: सर में दर्द है।
0: आतामा के मायने है सर, चुनांचे आतामा का इताई का मतलब हुआ सर में दर्द।
1: नेत्स गा आरुन दिस।
2: मुझे बुखार है।
0: नेत्स के मायने है हरारत या बुखार। आरु एक फेल है जिसका मतलब है होना, चुनांचे नेत्स गा आरु का मतलब हुआ बुखार होना। इस जुमले से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें सिफत की तरह फेल के बाद भी नदेस लगाया जा सकता है।
2: अब मकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
3: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: अब सेहत के कुछ और मसाइल के साथ मश्क करें। मसलन आपके पेट में दर्द है तो ये बात किस तरह कहेंगे? पेट की जापानी है
3: ओनाका, ओनाका।
0: और दर्द को कहते हैं
3: इताई, इताई।
0: तो सामीन कोशिश करें।
4: ओनाका गा इताई देस, ओनाका गा इताई देस।
0: और अगर आपको मतली की कैफियत महसूस हो रही हो तो कैसे कहेंगे? चक्कर या मतली जैसी कैफियत को कहते हैं
3: किमोची गा वारुई, किमोची गा वारुई,
1: किमोची गा वारुई देस, किमोची गा वारुई देस।
2: अब आप तबीयत खराब होने की सूरत में दूसरों को आसानी से बता सकेंगे।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का लफ्ज मकालमे में मियाँ ने इस्तेमाल किया है, इसे याद कर लें। ओदाई जीनी यानी अपना ख्याल रखें। ये किसी मरीज या जख्मी शख्स से कहा जाता है। ये एक तरह से मरीज के जल्द ठीक होने की तवक्को का इजहार है।
2: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
5: ओदाई जीनी।
2: सामीन अब आपकी बारी है तो सुनिए और दोहराइए।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपनी तबीयत की खराबी के बारे में बताती है।
6: तामसान, काओ इरो गा वारुई देसु यो। दो शितान देसु का?
7: नोदो गा इताई देसु।
6: ओया ओया, सोन्ना टोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा ई देसु यो।
7: カイトが今作っています。
5: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
7: お大事に。
6: ハルさんの知恵袋。
2: अब हारू सान की जंबील का कॉर्नर। आज हम आपको बता रहे हैं कि जापान में बीमार हो जाएं तो क्या करना चाहिए।
0: हिरा, आपकी तबीयत खराब हो तो आप क्या करती हैं?
2: इसका ताल्लुक बीमारी से है। मामूली मसले की सूरत में मेडिकल स्टोर से दवा ले लेती हूँ।
0: वाकई बीमारी के अलामत मामूली हों तो मेडिकल स्टोर से दवा लेना आसान है। स्टोर के माहिर अद्वियात को पेट में दर्द या बुखार वगैरह बीमारी की अलामत बताकर डॉक्टर नुस्खे के बगैर दवा ली जा सकती है।
2: लेकिन अगर डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो तो क्या किया जाए?
0: ऐसी सूरत में मुतल्लिका शोबे मसलन जनरल फिजिशियन या आँख या कान वगैरह के शोबे के हामिल क्लिनिक या अस्पताल जाना चाहिए। मुआयने के बाद डॉक्टर दवाएँ तजवीज़ करेगा। डॉक्टरी नुस्खा दिखाकर मेडिकल स्टोर से दवा लें। हुकूमत जापान के शोबे सियाहत JNTO की वेबसाइट पर उन तिब्बी इदारों की फहरिस्त मौजूद है जहाँ गैर मुल्की सयाहों के मुआयने की सहूलत मौजूद है। साइट तलाश करने के लिए फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO से सर्च करें। इस वेबसाइट को महफूज कर लेना बेहतर होगा। इसके अलावा सियाहती मराकज या होटल के इस्तकबालिया काउंटर से भी करीबी हस्पताल के बारे में मालूमात ली जा सकती हैं। और किसी हंगामी सूरत हाल में 119 पर फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई जा सकती है।
2: 119, मैं ये नंबर याद रखूंगी।
0: खुदा करे कि कभी ये नंबर इस्तेमाल करने की नौबत ना आए, लेकिन बहरहाल इसे याद रखना मुफीद होगा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 21 अगस्त शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। जापान और ओमान के विदेश मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ी चर्चा में इस अहम जलमार्ग के किनारे स्थित देशों और इसका उपयोग करने वाले राष्ट्रों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल किया जाना चाहिए। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने बृहस्पतिवार को खाड़ी देश ओमान में विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी के साथ दोपहर के भोज पर चर्चा सहित 2 घंटे से भी लंबी बातचीत की। ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य में एक नया समुद्री मार्ग निर्धारित करने के लिए ईरान के साथ वार्ता कर रहा है। दोनों देश इस अहम परिवहन मार्ग के आमने सामने स्थित हैं। मोतेगी ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि सभी जहाज़ों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के जलडमरू मध्य से मुक्त व सुरक्षित रूप से गुजरने की अनुमति दी जाए। उन्होंने ओमान और अन्य खाड़ी देशों के आर्थिक व अन्य क्षेत्रों में मजबूती लाने से जुड़ी जापान की सहायता योजनाओं के बारे में भी बताया। बद्र ने सतत ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में सहयोग जारी रखने की ओमान की मंशा व्यक्त की। रूस के रक्षा अधिकारियों के अनुसार उन्होंने अपने प्रशांत बेड़े के साथ ये मानकर अभ्यास किया है कि जापान के उत्तरी क्षेत्र के निकट जहाज़ों पर हमला हुआ है। उत्तरी क्षेत्र के द्वीपों पर रूस का नियंत्रण है, जबकि जापान इन पर अपना दावा करता है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास में परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी, एक निर्देशित मिसाइल क्रूज़र और बेस्टियन नामक एंटी शिप मिसाइल प्रणाली शामिल थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले सप्ताह एक सैन्य अभ्यास का निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि वे एशिया प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष की संभावना देख रहे हैं, क्योंकि नाटो वहां अपने पैर पसारने लगा है और एक नया सैन्य राजनीतिक गुट बन रहा है। उन्होंने जापान द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी अनुचित बताया। जापान सरकार ने उत्तरी क्षेत्र के एक द्वीप पर पुतिन के दौरे को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। सरकार का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने जापान के उत्तरी क्षेत्र में रूस की बढ़ती सैन्य उपस्थिति की आलोचना की है। उत्तरी क्षेत्र के चारों द्वीपों पर रूस का नियंत्रण है, जापान इन पर अपना दावा करता है। उत्तरी क्षेत्र के निकट रूस के नौसैनिक अभ्यास के बाद बृहस्पतिवार को ओमान में मोतेगी ने पत्रकारों से बात की। मोतेगी ने कहा कि मिसाइल अभ्यास सहित रूस की सैन्य उपस्थिति जापान के रुख से मेल नहीं खाती और इसलिए अस्वीकार्य है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उत्तरी क्षेत्र के हालिया दौरे के जवाब में जापान की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर मोतेगी ने कहा कि जापान ने रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जापान राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए समय आने पर जवाब देने पर विचार करेगा। उन्होंने आगे कहा कि जापान उत्तरी क्षेत्र की संप्रभुता के मुद्दे को सुलझाने और रूस के साथ शांति संधि करने के अपने रुख पर कायम है। मोतेगी ने कहा कि सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। टोक्यो के उत्तर में तोचिगी प्रीफेक्चर के खानुमा शहर स्थित शिन खानुमा स्टेशन पर बृहस्पतिवार सुबह तोबू रेलवे की निक्को लाइन की पटरियों पर काम कर रहे चार मजदूर एक लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। इन चारों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत की पुष्टि हुई। रेलवे कंपनी का कहना है कि पटरी पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर्मचारी शायद एक दूसरे को ठीक से संदेश नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। ये मजदूर पटरियों पर खरपतवार नाशक का छिड़काव कर रहे थे। तोबू रेलवे के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार रात एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दुर्घटना स्थल पर 10 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 7 खरपतवार हटा रहे थे और बाकी 3 को निगरानी करने और झंडों से संकेत देकर ट्रेनों को स्टेशन पर आने की अनुमति देने का काम सौंपा गया था। अधिकारियों के अनुसार ट्रेनों के आगमन पर नजर रख रहे दोनों कर्मचारी अपने निर्धारित स्थानों पर थे, लेकिन हो सकता है कि वे आपस में संवाद नहीं कर पाए। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन चालक को मजदूरों के पटरियों से हटने का संकेत मिला, जिसके बाद वो ट्रेन लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। पुलिस इन्हें पेशेवर लापरवाही के परिणाम स्वरूप हुई मौतें मानकर इस मामले की जांच कर रही है। जापान के युवराज और राजकुमारी आकिशिनो ने पैरागुए में एक स्कूल का दौरा किया है, जहां बच्चों को जापानी संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया जाता है। युवराज और राजकुमारी ने बृहस्पतिवार को राजधानी आसुनशियोन स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति सांतियागो पेन्या से औपचारिक भेंट की। इसके बाद शाही दंपति ने चाय समारोह सहित जापानी भाषा और संस्कृति की कक्षाएं देने वाले एक स्कूल का दौरा किया। अनुमान है कि पैरागुए में 10,000 जापानी प्रवासी और उनके वंशज रहते हैं। स्कूल में शाही दंपति को फूलों के गुलदस्ते भेंट किए गए, जिसके बाद शाही जोड़े ने पुस्तकालय में छात्रों से बातचीत की। एक छात्र ने युवराज को एक ओरिगामी तोता भेंट किया, जिसे युवराज ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। स्कूल ने दंपति के स्वागत समारोह का भी आयोजन किया, जिसमें जापानी वाक्यांशों वाला एक गीत प्रस्तुत किया गया। समारोह में कलाकारों ने अपने सिर पर बोतलें रखकर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसकी युवराज और राजकुमारी ने तालियां बजाकर सराहना की। जुलाई में चीन से जापान को दुर्लभ धातु चुंबकों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 52% की गिरावट आई। चीनी सीमा शुल्क अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को आंकड़े जारी किए, जिनके अनुसार दुर्लभ धातु चुंबकों का कुल निर्यात 5,375 टन रहा, जो पिछले वर्ष जुलाई की तुलना में 3.5% कम है। दुर्लभ धातु चुंबकों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के मोटर आदि में किया जाता है। जापान को भेजी गई मात्रा 111 टन रही, जिसमें 52.2% की बड़ी गिरावट आई है। चीन सरकार ने जनवरी से जापान को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर नियंत्रण कड़े कर दिए हैं। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि इन प्रतिबंधों का असर दिख रहा है। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि टंगस्टन के शोधन में प्रयोग होने वाले एक प्रमुख कच्चे माल का जापान को निर्यात जनवरी से जुलाई तक शून्य रहा। टंगस्टन एक अहम खनिज है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 25वें पाठ में अपनी तबीयत के बारे में बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो बैठक में आराम कर रही है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है।
0: तो आइए सुनते हैं 25वें पाठ की बातचीत।
2: तामसान, काओइरो गा वारुई देसु यो। दोशितान देसु का?
3: नोदो गा इताई देसु।
2: ओया ओया, सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
3: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
4: तामसान, देकिता यो। हाई, दोज़ो।
3: ओ दाइजी नी।
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: हारूजी में लगे सेंसर ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी टिमटिमाने लगी। तो हारूजी ने ताम से पूछा,
2: तामसान, काओइरो गा वारुई देसु यो।
1: ताम जी, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है।
2: दोशितान देसु का?
1: क्या हुआ?
0: ताम ने खांसते हुए जवाब दिया,
3: नोदो गा इताई देसु,
1: गले में दर्द है।
0: तब हारूजी ने कहा,
2: ओया ओया।
1: ओ,
0: फिर हारूजी ने ताम को सलाह दी,
2: सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
1: ऐसे समय में अदरक और शहद वाला गर्म पानी अच्छा रहता है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
3: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
1: काइतो अभी बना रहा है।
0: फिर काइतो ताम के लिए अदरक और शहद वाला गर्म पानी लेकर आया।
4: तामसान, देखता यो।
0: ताम बन गया।
4: हाई, दोज़ो।
0: ये लो।
1: उसके बाद मिया ने ताम से कहा,
3: ओ दाइजी नी,
1: अपना ध्यान रखो।
0: अदरक और शहद वाला गर्म पानी बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए अदरक को शहद के साथ गर्म पानी में मिलाया जाता है। ये माना जाता है कि इसे पीने से गले के दर्द और खांसी से राहत मिलती है। इसे पीकर ताम को अच्छा लगेगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: नोदो गा इताई देसु,
1: यानी गले में दर्द है। ये वाक्य सीखकर आप तबीयत खराब होने पर अपनी परेशानी बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: नोदो
0: का अर्थ है गला। उसके बाद लगा है गा, जो उस अंग के नाम के बाद लगाया जाता है जिसमें दर्द हो, और
5: इताई देसु
0: का मतलब होता है दर्द है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि
5: इताइन देसु
1: के अंत में लगे
5: देसु
1: का उपयोग अपनी बात समझाते समय किया जाता है। इसलिए किसी को अपनी तबीयत के बारे में बताते समय भी वाक्य के अंत में लगाते हैं
5: देसु। इताइन देसु
0: में पहले आया है ई विशेषण,
5: इताई
0: यानी दर्द होना, और उसके बाद लगा है
5: देसु।
0: आज की बातचीत में ताम इस वाक्य की मदद से हारूजी को अपनी परेशानी समझा रही है।
1: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इताइन देसु, नोदो गा इताइन देसु।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें कोई अपनी तबीयत के बारे में बता रहा है।
3: どうしたんですか？
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले महिला ने कहा,
3: どうしたんですか？
1: क्या हुआ?
0: कोई परेशान दिख रहा हो तो उसकी समस्या पूछने के लिए इस वाक्य का उपयोग करते हैं। ये पूरा वाक्य एक साथ याद कर लीजिए।
1: जवाब में पुरुष ने कहा,
6: अतामा का इताइन देसु,
0: सिर में दर्द है।
5: अतामा
1: का मतलब है सिर, इसलिए
5: अतामा का इताई
1: का मतलब हुआ सिर में दर्द है। पुरुष ने आगे कहा,
6: नेत्स गा अरुन देसु,
0: बुखार है।
5: नेत्स
1: का अर्थ है बुखार, और
5: अरु
1: एक क्रिया है जिसका अर्थ है होना। तो
5: नेत्स गा आरु
1: का मतलब है बुखार होना। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि
5: देस
1: विशेषणों के ही नहीं क्रियाओं के बाद भी लग सकता है।
0: तो अब ये बातचीत सुन लीजिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
5: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, तो ये बात जापानी भाषा में कैसे कहेंगे? पेट के लिए जापानी शब्द है
5: ओनाका,
1: और दर्द को जापानी भाषा में कहते हैं
5: इताई।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: ओनाका गा इताई देस। ओनाका गा इताई देस।
0: अब मान लीजिए कि बहुत देर तक किसी वाहन में बैठे बैठे आपको आपकी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब लगना को जापानी में कहते हैं
5: किमोची गा वारुई।
0: तो अपनी बात जापानी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए।
6: किमोची गा वारुई देस। किमोची गा वारुई देस।
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: ओदाइजिनी।
5: ओदाइजिनी
0: का अर्थ है अपना ध्यान रखो। अगर कोई बीमार हो या किसी को कोई चोट लगी हो तो आप फिक्र दिखाने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आराम करके जल्दी ठीक हो जाए।
1: अब इस वाक्य को विभिन्न लोगों की आवाजों में सुनते हैं।
7: お大事に。お大事に。お大事に。
0: और अब एक बार फिर से सुन लेते हैं आज की बातचीत।
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: 春さんの知恵袋。
1: अब बारी है हमारे अंश हारू जी की सलाह की, जिसमें आज हम बता रहे हैं कि अगर आप जापान में बीमार हो जाएं तो क्या कर सकते हैं।
0: जापान में बीमार होने पर क्या करना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी के लक्षण क्या हैं।
1: अगर लक्षण गंभीर ना हो तो आप किसी भी दवाखाने या फार्मेसी से दवाई ले सकते हैं। वहाँ दुकानदार को अपनी परेशानी बताने पर वो आपको सही दवाई दे देगा। तो दवाखाने जाइए और दुकानदार से कहिए पेट में दर्द है या बुखार है। ऐसा करने पर आपको बिना पर्ची के दी जा सकने वाली दवा मिल जाएगी।
0: लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको किसी चिकित्सालय या अस्पताल जाना होगा। विदेशी पर्यटकों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूची जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन यानी JNTO की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आप फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO शब्द से सर्च कर सकते हैं। इसे बुकमार्क कर लीजिएगा।
1: इसके अलावा पास के अस्पताल या चिकित्सालय का पता लगाने के लिए आप पर्यटन केंद्र या होटल के रिसेप्शन पर भी पूछ सकते हैं, और आपात स्थिति में फोन पर 119 दबाकर एम्बुलेंस बुला सकते हैं।
0: लेकिन हम ये कामना करते हैं कि जापान में यात्रा करते समय आपको कभी भी इन सुविधाओं की जरूरत ना पड़े।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ साकुरा यानी चेरी के फूल देखने जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: हलाकशुदगान पटरियों पर जड़ी बूटी मार दवा का छिड़काव कर रहे थे। तोबू रेलवे हुकाम ने जुमेरात की रात एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि जाए हादसा पर 10 अफराद मौजूद थे। 7 कारकुन जड़ी बूटियां साफ कर रहे थे, जबकि बाकी 3 को ट्रेनों पर नज़र रखना और उन्हें स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त देने के लिए झंडियों के ज़रिए सिग्नल देना था। उनका कहना था कि 2 कारकुन जो करीब आने वाली ट्रेनों पर निगाह रखे हुए थे, वो मुकर्रा जगहों पर मौजूद थे, लेकिन हो सकता है कि वो आपस में राबता ना कर सके हों। उन्होंने वजाहत की कि ट्रेन ड्राइवर इस बात का इशारा मिलने के बाद प्लेटफॉर्म में दाखिल हुआ कि तमाम कारकुन पटरियों से चले गए हैं। पुलिस हलाकत का सबब बनने वाली पेशावराना गफलत के शुबे में तहकीकात कर रही है। जापान के वली अहद और शहजादी आकिशिनो ने पैरागोए के एक स्कूल का दौरा किया, जिसमें जापानी सकाफत से मुतालिक प्रोग्राम मौजूद हैं। जुमेरात को वली अहद और शहजादी ने दारुल हुकूमत आसुनसियोन में सदर सेंटियागो पेनिया से सदारती महल में खैर सगाली मुलाकात की। इसके बाद वो मस्कूरा स्कूल पहुंचे, जो चाय की तकरीब समेत जापानी जुबान और सकाफत की क्लासेस फराहम करता है। एक अंदाजे के मुताबिक पैरागोए में 10,000 तारकीन वतन जापानी और उनकी नस्लें आबाद हैं। स्कूल में वली अहद और शहजादी को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए और लाइब्रेरी में उन्होंने तलबा से बातचीत की। वली अहद उस वक्त मुस्कुराए जब एक तालिब इल्म ने उन्हें ओरिगामी तोता पेश किया। स्कूल ने उनके लिए इस्तकबालिया तकरीब भी मुनक्किद की, जिसमें ऐसा गाना पेश किया गया जिसमें जापानी बोल शामिल थे। वली अहद और शहजादी ने उस वक्त तालियां बजाई जब उन्होंने रिवायती रक्स देखा, जिसमें फनकारों ने अपने सरों पर बोतलों को तवाजुन में रखा। चीन से जापान को नायाब अर्जियाती मिकनतीस की तरसील जुलाई में साल ब साल के हिसाब से 52% कम हुई है। जुमेरात को चीनी कस्टम हुकाम की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार से पता चलता है कि नायाब अर्जियाती मिकनतीस की मजमूई बरामदात 5,375 टन रही, जो गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में 3.5% कम है। नायाब अर्जियाती मिकनतीस दीगर मकासद के अलावा बरकी गाड़ियों की मोटरों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जापान को तरसील 111 टन रही, जो 52.2% की नुमायाँ कमी है। चीनी हुकूमत ने जनवरी से जापान के लिए दोहरे इस्तेमाल वाली अशिया पर बरामदी कंट्रोल सख्त कर दिया है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार से ज़ाहिर होता है कि इन पाबंदियों का असर हो रहा है। इन आदाद शुमार से ये भी पता चलता है कि टंगस्टन को साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कलीदी खाम माल की जापान जाने वाली बरामदात जनवरी से जुलाई तक 0 रहीं। टंगस्टन एक कलीदी मादन है जो वसी तादाद की सनतों में इस्तेमाल होती है। गुज़िश्ता माह जापान को चीन की मजमूई बरामदात में 14% इजाफा हुआ। ताहम मादनियात की वो खेप जो जापान ज़्यादातर चीन से दरामद करता है और बाज़ दीगर एशिया में कमी वाक़ हुई, इससे जापानी सनतों पर पड़ने वाले असरात के खदशात पैदा हो गए हैं।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर तशरीफ़ लाइए।